ऐसे ही वैसे ही बंद पड़ा रहा, इस्तेफादा नहीं किया। आप देखें अफ्रीका में जाए, देखें कितने जवाहरात के खजाने हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको रिफाइंड करना नहीं आता, साफ करना नहीं आता, जुदा करना नहीं आता, इस्तेफादा। दूसरी कौम के लोग आते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं उनके बादशाहों को और हाकिमों को, और पूरा खजाना भर भर के लेके जाते हैं। हो सकता है कि हम भी अहले बैत के दिए हुए खजाने से इस्तेफादा ना कर सकें तो कल दूसरी कौमें आए और इससे इस्तेफादा करें, क्योंकि इस्तेफादा तो होगा। निजात इसी में है, निजात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में नहीं है, जो आले सऊद और आले खलीफा और आले नहीं मालूम सब बना रहे हैं। ये मस्नूई और आर्टिफिशियल शहर बना लेने में निजात नहीं है, निजात है तर्ज ज़िंदगी ढूंढने में, जो इंसान को सही तरीके ज़िंदगी दे दे। ये सब कुछ बना के तलाक हो रहा हो, नफ़रतें हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, रोज़ाना कोर्ट में हो, रोज़ाना मुश्किलात हो, जहन्नम की ज़िंदगी हो, करोड़ों का बंगला हो लेकिन ज़िंदगी उसके अंदर जहन्नम बनी हुई हो, क्यों? इसलिए कि तरीक़ा ज़िंदगी नहीं सीखा गया। अल्लाह ने ज़िंदगी तो हमें दे दी, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी के साथ साथ हमें तरीक़ा ज़िंदगी भी दिया था। हमने ज़िंदगी ले ली लेकिन तरीक़ा ज़िंदगी अल्लाह से नहीं लिया। और इलाही तरीक़ा, अल्लाह ने जो तरीक़ा ज़िंदगी दिया वो क्या है? वो अम्बिया का तरीक़ा ज़िंदगी है, वो रसूलुल्लाह का तरीक़ा ज़िंदगी। ये खिताबत नहीं अजीज़ो, धीरे धीरे इंसान उस मरहले तक पहुँचने वाला है कि जब आकर मजबूर हो कि अब किसी के पास जा ही नहीं सकते, कहीं निजात का सामान ही नहीं है सिवाए अम्बिया और आइम्मा और उन इलाही इंसानों के तर्ज ज़िंदगी को अपनाने, है नहीं कोई निजात का रास्ता, किसी भी तरह से निजात का रास्ता नहीं। ये सिर्फ दावे नहीं, इसकी सब दलीलें भी मौजूद है, लेकिन अभी उन सारी दलीलों में नहीं जाना। लेकिन आप खुद सोच लें, जिन लोगों की ज़िंदगी गैर इलाही है, अंदर जाके झांक के देखें, बाहर से मुमकिन है बहुत कुछ अच्छा लग रहा हो लेकिन अंदर से ज़िंदगी खोखली पड़ी हुई है, कि जब रूह में इलाही रंग नहीं है तो खोखला है इंसान। कितने बड़े महलों में रहता हो, कितनी अच्छी गाड़ियों में रहता हो, कितनी अच्छी ज़िंदगी ज़ाहरी तौर पर दिख रही है, लेकिन अंदर से खोखला इंसान। ये खोखला इंसान तो निजात नहीं पाया हुआ है, निजात कौन दे रहा है? ये जो तर्ज ज़िंदगी की बहस की जाए, ये जो सीरत की बहस की जा रही, इसलिए बहस की जा रही कि धीरे धीरे बशरियत इस तरफ आ रही है। इमाम सैयद सज्जाद, मैं जल्दी आ रहा हूँ चूँकि आज थोड़ा वक्त भी कम है, जल्दी निकलना है। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी उसी ज़िंदगी में जो इतनी सख्तियों के दरमियान में थी, सीरत के इतने उसूल छोड़ के चले गए कि हम ज़िंदगी भर लेते रहें कम है। करबला में, पूरी करबला में इतने तरीक़े ज़िंदगी दे दिया गया, इतना ज़्यादा तरीक़े ज़िंदगी दे दिया गया। एक बहस है जो पहले कर चुके, खाली एक जुमला कह गुजरते हैं कि करबला के खेमों में सामान ज़िंदगी नहीं था लेकिन तरीक़े ज़िंदगी भरा हुआ था। सामान ज़िंदगी तो इब्तदाई सामान, पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं थी। हम तो सामान्य ज़िंदगी के चक्कर में भाग दौड़ सारी कर रहे हैं। करबला वाले आए थे तरीक़े ज़िंदगी देने के लिए। ये सामान्य ज़िंदगी जो है, ये भी उस वक्त अच्छा है जब तरीक़े ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा हो। लिहाजा मैदान करबला में जब जाएँ तो वहाँ सामान्य ज़िंदगी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इब्तदाई तरीन चीज़ें भी नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उन्हीं खेमों में, जलते हुए खेमों में बीबियाँ, बच्चे, जवान, बूढ़े सब इतना तरीक़े ज़िंदगी दे के चले गए कि हम कयामत तक लेते रहें। अभी ख़जाने बने हुए हैं, अभी तो हम उसको निकाल भी नहीं पाए। अभी करबला से हमने तरीक़े ज़िंदगी कितना निकाला है? हमने तो नहीं निकाला है। ठीक है, कोई इमाम खुमैनी जैसा इंसान आता है, वो तरीक़े ज़िंदगी निकाल भी लेता है, लोगों को सिखा भी देता है, उसका नतीजा भी दिखा देता है, नतीजा भी देख लिया, उसका नतीजा भी देख लिया। सबसे आसान नतीजा जो एक दो जगह मैं इसी साल कह भी चुका हूँ, सबसे आसान जो हर एक को समझ में आने वाला नतीजा ये है कि जब तक ये तरीक़े ज़िंदगी किसी ने हमें आके नहीं सिखाया था और ये निज़ाम नहीं दिया था, हम शिया मौजूद थे लेकिन चार मासूम इमामों की कब्रों की हिफाजत नहीं कर पाए, जन्नतुल बकी की हिफाजत नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने करबला वालों से तरीक़े ज़िंदगी सीख लिया तो सीरिया में जनाब ज़ैनब के हरम के करीब नहीं आने दिया।

या कहते हैं बीमार, क्योंकि हमें शाह और शहंशाह अच्छे लगते हैं, शहजादा अच्छा लगता है, इमामजादा नहीं अच्छा लगता। कब कहते हैं अली अकबर, इमामजादे, शहजादे बहुत अच्छे लगते हैं। ये शाह नहीं थे, इमाम थे। शाह उनकी खाकों, उनकी जूतियों की खाक के नीचे रहने वाले लोग थे। क्या लकब दे रखा है हम लोगों ने? कभी किसी इमाम ने भी किसी इमाम को शाह का लकब दिया? कभी किसी नबी ने किसी नबी को? शाहों से नफरत करते थे, शाहों के खिलाफ उठे, शाहों के खिलाफ तरीके जिंदगी दिया, शाहों के खिलाफ लोगों को आमादा किया, आकर उन्हीं को शाह हो, शहनशाह हो, फला शाह हो, ये शाह हो, वो शाह का लकब। दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक कि शहजादा न कहने, जब तक कि शहजादी न कहने। एक मरतबा नबीजादी कहें, इमामजादी कहें, वलीजादी कहें, ये क्यों नहीं कहा जाता? ये दादा बुलंद मकाम है। फिर या तो वो शाह कहते हैं चूंकि शाहों से मुतासिर हैं, या तो फिर आगे बिल्कुल बीमार कर देते हैं जिंदगी भर के लिए। नहीं, वो बीमार नहीं थे, बस किरदार अदा कर रहे थे। किरदार क्या था, क्या किया? देखिए, दो काम किए इमाम सैयद सज्जाद ने, दो बड़ी जिम्मेदारियां थी इमाम सैयद सज्जाद पर, दो बड़ी। एक जिम्मेदारी वो थी जो हर नबी और हर इमाम पे थी, वो क्या? सही दीन की हिफाजत करना और लोगों तक पहुंचाना। ये बात अभी बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, चूंकि उनको न दीन चाहिए न सही दीन की हिफाजत चाहिए। लेकिन हर नबी और हर इमाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि अल्लाह का सही दीन, उसकी हिफाजत भी करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं भी। इसके लिए कुर्बानियां दी हैं अंबिया की, जो जाने गई हैं सिर्फ सही दीन पहुंचाने के लिए, चूंकि वो टकराता था बातिलों से, जालिमों से, मुरफहीन से, मला से, मुतरफीन से, इन लोगों से टकराता था, लिहाजा वो आकर कत्ल कर देते थे, क्योंकि सही दीन जो है वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करता। लिहाजा एक काम ये करना था, ये काम तमाम अंबिया को करना था, तमाम आइम्मा को करना था, इमाम सैयद सज्जाद को भी करना था। लेकिन इमाम सैयद सज्जाद को इतना ही नहीं करना था, एक काम और भी करना था, एक काम बढ़ गया था इमाम सैयद सज्जाद, वो क्या? कहा कि करबला को भी पहुंचाना है। करबला कोई मामूली सा तो वाकया नहीं था कि हो के खत्म हो जाए, करबला को पहचाना है और करबला को एक तहरीक के तौर पर पहुंचाना है, करबला को कयामत तक के इंसानों की जिंदगी का सबब बनाकर पहुंचाना है। ये कोई मामूली मसला नहीं था, ये दो बड़े काम इमाम सैयद सज्जाद को करने थे। और दौर ऐसा था जहां पहुंचाने का तरीका सिर्फ एक था, क्या? जबान, और कुछ नहीं था। ना मीडिया था, ना प्रिंट मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना ये था, ना किताबें थी, ना मैगजीन थी, कुछ भी नहीं था, ना कुछ भी नहीं था। एक खत भी लिखना होता था, पहुंचना बड़ा मुश्किल। सिर्फ एक ही तरीका था पहुंचाने का कि आकर बोलें, दर्स दें या खुतबा दें, यही दो तरीके थे, या खुतबा देना या दर्स देना। और इमाम सैयद सज्जाद का दौर ऐसा है कि ना दर्स दे सकते हैं ना खुतबा दे सकते हैं, दोनों पर पाबंदी है। अब क्या करें? अब फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, अगर इमाम आइम्मा भी हम जैसे मौलवी होते तो खामोश होकर घर पर बैठ जाते कि हम क्या कर सकते हैं, लोग मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आइम्मा हैं, आइम्मा अपना किरदार अदा करके रहेंगे, आइम्मा मौलवी नहीं है। एक जुमला फिर दोहराता हूं, कोई आइम्मा को और अंबिया को मौलवियों से नहीं समझो, मौलवियों को आइम्मा से समझो। ये ना देखो कि मौलवी ऐसा है तो आइम्मा भी ऐसे थोड़े बेहतर रहे होंगे, ना ये देखो कि आइम्मा ऐसे थे तो मौलवी उस राह पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर बातिल। अगर अंबिया की राह पे चल रहा है तो अच्छा। अंबिया का रास्ता क्या था? अंबिया का रास्ता यह था कि तुम पत्थर मारते रहो लेकिन हम अपना काम करते रहें। अंबिया आइम्मा का रास्ता यह था कि तुम पाबंदियां लगाओ, तुम जासूस भेजो, तुम घर पर निगाह रखो, तुम लोगों को देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हम अपना किरदार अदा करेंगे, हम दीन भी पहुंचाएंगे, हम करबला भी पहुंचाएंगे। लेकिन कैसे पहुंचाएं? हाँ, तरीके बदलते रहते हैं। इमाम सैयद सज्जाद का तरीका यह था कि मदीने से घर से बाहर निकल जाते थे, 35 साल का मरहला है, मदीने से बाहर निकल जाते थे, बाहर जाने के बाद बहुत सारी जमीनों को आबाद करते थे। दो दिन पहले भी इशारा किया था कि आइम्मा कितना काम करते थे खुद। आइम्मा ये नहीं थे कि तकिया हटाते थे, वहां एक थैली पड़ी हुई मिलती थी, लोगों को दे देते थे, खाते पीते थे, ना खुद मेहनत करते थे, अपनी मेहनत से खाते भी थे, खिलाते भी थे। ये मौजजात वो कभी कभी होते थे जब बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, वो नहीं हर वक्त मौजजा होता रहता। अब यहाँ पर लोग मौजजे वाली मजलिस बहुत

0: मैं खुद तुम्हारी छावनी को पार करके यहाँ आया हूँ कि तुम्हें बता दूं कि मुझे तुमसे या तुम्हारे सरबाजों के जुनून आमीज नारों से कोई खौफ नहीं।
1: बिल्कुल, मैं जानता हूं कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के पास खौफ नाम की कोई चीज नहीं। अब जब आ ही गए हो तो चलो कुछ देर मेरे खेमे में आराम कर लो और फिर बैठ के बात करते। एक मुद्दत से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है मोमिन।
0: न मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, न ही तुम्हारे खेमे में मेरी कोई जगह है। तन्हा आया हूँ कि जानू तुम

0: जाओ तुम सलामती से जा सकते हो, मगर ये जान लो कि तुम हक बात सुनने की सलाहियत नहीं रखते। पिसर अबू सुफियान, मेरा एक मशवरा है, अगर मान ली तो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा और ना कोई मुसलमान का खून बहेगा। अगर हिम्मत है तो आओ, अपनी तलवार निकालो और इसी मैदान में आओ। इसी जगह पे हम और तुम इस जंग का फैसला मुय्यन करेंगे, क्या कहते हो? आओ।
1: हाजिर हूं।
0: हाजिर हूं?
1: हाँ मैं हाजिर हूं।

0: मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इससे पहले कि हमारी तलवारें टकराएं, मेरे चंद सवालों के जवाब दो।
1: मुझे मालूम था तुम फरेब का सहारा लोगे। सिफीन में भी तुमने यही चाल चली जब अली मुर्तजा ने बुलाया था।
0: तो तुम अपने आप को अली के बराबर समझते?
1: माज़ल्लाह,
0: अगर तुम मेरी जगह होते तो कबूल कर लेते। सदाकत से जवाब दो इब्न अब्बास, क्या तुम अली की जुल्फिकार के सामने टिक सकते थे? देखो, मैं अपने सिपाहियों के सामने कह रहा हूं, बिला झिझक और बगैर किसी शर्म के कह रहा हूं कि मैं मुआविया इब्न अबी सुफयान अली इब्न अबी तालिब के साथ मुकाबले की ताकत नहीं रखता था। क्या मेरा ये कहना मेरी सदाकत की दलील नहीं है?
2: यानी चे
0: अब तुम भी मेरी तरह हिम्मत से काम लो और साफ साफ कह दो कि हसन इब्न अली की बयात क्यों की।
1: इसलिए कि उनको अली मुर्तजा का जानशीन और वली अमर मुस्लिमीन मानता हूं।
0: ये तुम अपने दिल की गहराई से कह रहे हो?
1: वल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है।
0: क्या मुतमईन हो कि कोई दूसरा इरादा इस बयत में शामिल नहीं है?
1: मैं मुतमईन हूं।
0: क्या तुमने हसन इब्ने अली की बयत इस मकसद से नहीं की थी कि उसके जरिए तुम उन्हें मेरे साथ जंग पर उभारो?
1: नहीं, मैंने बगैर किसी शर्त के उनकी तरफ हाथ बढ़ाया।
0: क्या बुसर इब्ने अर्तात उस मलऊन ने तुम्हारे दोनों बेटों का सर नहीं काटा?
1: उस शैतान का अमल हसन इब्ने अली की बयत से रब नहीं रखता।
0: तो क्या तुम मुझे अपने दोनों फर्जंदों के कत्ल का जिम्मेदार नहीं जानते?

0: हाँ जानता हूं, लेकिन नहीं, तुम अपने फर्जंदों की खूंखाई के खातिर हमारे मुकाबले ना आए हो, ना हसन इब्ने अली की मोहब्बत में। तुमने फर्जंदे रसूल खलीफे वक्त के खिलाफ खुरूज किया है और सिर्फ तलवार की जबान समझते हो, और यही दलील है हमारे और तुम्हारे रूबरू होने की।
1: तुम मुतमईन हो?
0: हाँ मैं मुतमईन। तुम्हारी चाल अली मुर्तजा के साथ भी यही थी, सिफीन भूल गए।
1: तुम सच समझो या झूठ, सिफीन का मकसद कुछ और था, खून उस्मान दरमियान में था। भूलो नहीं कि तलहा और जुबैर भी इसी राह पर चल रहे थे, लेकिन अब वो दिन नहीं है। न यहां सिफीन है और न हसन अली, हसन रऊफ है, हसन दिलसोज है और मुस्लिमीन के जान व माल का फिक्रमंद भी। वो फर्जंदो दिलबंद रसूल खुदा है, उसके चेहरे पर वही नूर था जो रसूल खुदा के चेहरे पर था।
0: ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती।
1: मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर हसन को अपने कांधे पर सवार करते थे। उस वक्त तुमने देखा कौन सी उनकी खूबियां हैं जो मैं नहीं जानता, और क्या क्या तारीफें पैगंबर से मैंने नहीं सुनी।
0: बंद करो अपने मुंह को।
1: क्या इसके बावजूद भी मुमकिन है कि मैं उस पर तलवार चलाऊं?
0: क्या तुमने तलवार नहीं खींची है?
1: मैं हसन इब्ने अली का दुश्मन कैसे हो सकता हूं?
0: तो क्या तुमने दुश्मनी नहीं की?
1: कैसे मुमकिन है कि मैं उस पर और उसके अहले बैत पर जुल्म सितम ढाऊं?
0: तुम झूठ कहते हो।
1: क्या मुमकिन है कि मैं उनकी बेहुर्मती करवाऊं?
0: वल्लाह तुम झूठ बोलते।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकता, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। जमाने की गर्दिश और बदकिस्मती ने मुझे ऐसी कौम का सरबराह बना दिया है जो कि बनी हाशिम की खिलाफत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं? हसन बनी हाशिम से है, इब्ने अब्बास, ये मेरी बात नहीं है। चाहे मैं रहूं या न रहूं कोई फर्क नहीं करता, ये कौम उस कौम से खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता कहीं खानदान रसूल खुदा की हतक व बेहुर्मती हो। बस अम्र वो तस्लीम हो गया, देखो दीवानों की तरह सर झुकाए जा रहा है।
2: उसे अपने हाल पे छोड़ दो, अब उबैदुल्लाह का काम तमाम हो गया।
1: जो कुछ तुमने मुझे सिखाया मैंने बिल्कुल वैसे ही कहा, लेकिन उसने बड़े सख्त जवाब दिए, ऐसे जवाब दिए कि गोया पहले से तैयार किए थे। जानते हो कि उसने कौन सा जवाब नहीं दिया? जब मैंने अली इब्न अबी तालिब के बारे में कहा, मैंने कहा तुम हसन इब्न अली के जानशीन बनना चाहते हो, तो उसकी सांस रुकने लगी और वो खामोश हो गया। उस तारीकी में मैंने एहसास किया कि उसका रंग जर्द हो गया था और वो जवाब न दे सका आम्र, और बेख्तियार मैं अपने दिल में कहने लगा कि आम्र हकीकत में तुम शैतान बुजुर्ग हो।
2: और मैंने भी जब उस तारीकी में तुम्हारी और उबैदुल्लाह की तरफ नजर डाली तो उसी वक्त मैंने अपने आप से कहा कि आम्र हकीकत में तुमने एक बड़े शागिर्द की तरबियत की है।
1: जानते हो आम्र, अगर मैं और तुम नूह की हयात पाते तो सारी दुनिया को मुसख़र बना सकते थे, और कोई हमारी अक्ल के मुकाबले मुकावमत की ताब नहीं लाता।
2: ये एक ऐसा जानलेवा गम है कि जब भी मैं अपने इन सफ़ेद बालों को देखता हूँ तो एहसास करता हूँ और तसव्वुर में होता हूँ कि अभी ज़माना ज़्यादा दूर नहीं कि इस दुनिया को गुजार दूँ और बिस्तर बनता चला जाऊँ।
1: चलो छोड़ो, लेकिन अभी हमारी नौबत नहीं आई है।
2: पहले उबैदुल्लाह की खयानत की खबर मदायन तो पहुँचने दो, उसके बाद चंद खतूत और चंद सफीर अबा मोहम्मद के पास भेज दो, फिर सुलह का तकाजा करो।
1: सुलह का तकाजा कबूल करेगा?
2: नहीं नहीं, वो हरगिज तुमसे सुलह नहीं करेगा।
1: क्यों?
2: होशियार रहो, ये फर्जंद अली इब्ने अबी तालिब है, बगैर किसी शक को तरद्दुद जल्द या देर तलवार उठाएगा, और जब फौज की कम हिम्मती से नाउमेद होगा उस वक्त फिर वो तन्हाई तो

0: पर बरस पड़ेगा और मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी हुकूमत का पाया हिला कर रख देगा। यही वो चीज़ है कि जिससे तुम्हें परहेज करना चाहिए। माविया इब्न अबू सुफियान सुलह का तकाजा करता है और हसन इब्न अली जंग चाहते हैं। तुम ऐसा कह के ये बताना चाहते हो कि मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए और ख़ानदान रसूल की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ये कहना बाइस होगा उन पर जो बुजदिल और डरपोक हैं, उन पर जो जंग के अंजाम से खौफजदा हैं, और ऐसी सूरत में वो हसन इब्न अली का साथ छोड़ देंगे।
1: लेकिन उसके ऐसे साथी भी हैं जो जंग से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे।
0: हाँ, मैं जानता हूं ये गिरा खवारिज के हाथों ही खुलेगी।
1: खवारिज? काबिल यकीन नहीं, इम्कान नहीं। पहले रशीद और फिर ये मुसीबत।
2: पता है जब मैं उनकी तलाश से मायूस हो गया तो मेरी क्या तमन्ना थी। मेरी आरजू थी कि उनका जिस्म मुझे ऐसे मिले कि गारतगरों का खंजर उनके सीने में हो। मेरी तमन्ना थी कि जासूसों ने उन्हें कत्ल कर दिया हो और उनकी खून आलूद लाश मुझे मिले।
1: लेकिन अजीब है, हमारी भी यही आरजू थी।
2: अब क्या करना चाहिए? हो सकता है उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास।
1: न कहो हर्ब, मेरे पास सुनने की ताकत नहीं है। हकीकत को कबूल करनी चाहिए। उबैदुल्लाह फरार हो गए, इसमें कोई शक नहीं। निगहबान ने उन्हें पहाड़ से फरार करते देखा है। तुम्हारा मतलब वो माविया से मिल गया है?
2: कैसे मुमकिन है वो मुआविया से मिल जाए?
1: साले, नमाज का वक्त हो गया है, अजान दो। सुनो हर्ब, नमाज के बाद सालेह के साथ तुम भी कूफा चले जाना और बैत इमाम की हिफाजत अपने जिम्मे ले लेना। अगर वाजिब समझो तो उन्हें कूफे से बाहर ले आना, लेकिन इस बात की खबर किसी को न पहुंचे। शायद इस खबर के पहुंचने पर माविया के जासूस अबा मोहम्मद पर दबाव डालने के लिए फितना व बलवा खड़ा कर दें।
2: ठीक है,
1: फिर मेहराब में कौन खड़ा होगा? मैं, हसन इब्ने अली ने जब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को लश्कर की सरदारी दी तो फरमाया, अगर उबैदुल्लाह कत्ल हो गया तो कैस, और अगर कैस कत्ल हो जाए तो सईद लश्कर के सरदार होंगे। तो लोगों को क्या जवाब देंगे अगर उबैदुल्लाह का पूछे? हमें क्या मालूम कि उबैदुल्लाह पे क्या गुजरी, हम नहीं जानते।

सोचो क्या करोगे कैस, लोग इंतजार में बैठे, कोई चारा नहीं है। चलिए उनके सवाल का जवाब दें, आइए।

0: आज तुमने क्यों नमाज पढ़ाई? उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास कहाँ हैं?
1: उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास का जानना चाहते हो? सुनो, बताता हूँ।

सुनो ए लोगो सुनो, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास हमारे पास है। कल रात वो खुद चलकर अमीर अल मोमिनीन मुआविया इब्ने अबी सुफियान के खेमे तक आए और लाखों दिरहम का इनाम पाया।

0: क्या कह रहे हो शिम? मुआविया से मिल जाए,
1: हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अबू सुफियान के बेटे से मिल जाए, वरना हम सब की जानें खतरे में हैं।
0: कैसे हो सकता है?
2: इब्ने उमैर ने मदाइन से खबर दी है कि जासूसों और गारतगरों ने अबा मोहम्मद के लश्कर का शेराजा बिखेर दिया है। सुनो भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो, अब कोई भी किसी पे एतमाद नहीं करेगा। आए दिन लाशें मुसलसल खेमों से बाहर आ रही हैं और बहुत से लोग खौफ खाकर मुसलसल फरार हो रहे हैं।
1: तो आमादा रहना चाहिए कि मुनासिब वक्त पे कूफे पे काबिज हो जाए और इससे माविया से तकर्रुब का जरिया बनाए।
0: अच्छी बात है तो ठीक है, फिर तो हमें माविया के करीब हो जाना चाहिए।
1: ठहरो, मैं बताता हूँ, बात सुनो। इससे पहले के हम लोग क्या हुआ, कहाँ चले?
2: जौदा मुझसे मिलने आई है।
1: तुम्हारी बेटी?
2: हाँ, जरूर कुछ काम होगा।
3: सलाम पिदर।
2: अलैका सलाम बेटी, क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रही हो, क्या कोई बात हो गई है?
3: तुम सच कह रहे थे, हसन इब्न अली जन खाइन के दरमियान फंस गए हैं। सच जानना चाहते हो? जब मैं तुम्हारी बातों को सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मेरी भलाई और रसूल खुदा के फर्जंद की खैर ख्वाही के अलावा कुछ नहीं सोचता।
2: बताओ बेटी, क्या बात हो गई है?
3: हसन इब्न अली के सरदार एक एक करके उन्हें छोड़ रहे हैं और माविया से जा मिल रहे हैं।
2: क्या बात कर रही हो बेटी, मेरी जान मुंह को आ रही है।
3: हसन इब्न अली के चचाजाद भाई उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, जो उनका सिपे सालार और हसन इब्न अली का सबसे नजदीक था।
2: मगर उबैदुल्लाह ने क्या किया?
3: अभी खबर आई है कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास फरार कर गया और हजारों दिरहम के अवज माविया के लश्कर में शामिल हो गया है।
2: सच कह रही हो? यह खबर कौन लेकर आया है?
3: हर्ब इब्न अब्दुल्ला और साले बिन हारिस, अबा मोहम्मद के दो बावफा साथी आए हैं ताकि इनके घर की हिफाजत करें, इसलिए कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए।
2: वाह मुसीबता, तुम्हें यकीन है कि यह खबर सच है?
3: हाँ पिदर, जब हर्ब ने उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के फरार की कैफियत बयान की तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रंजो अलम से रो रहा था। उन्होंने तेजी से अपने घोड़े दौड़ाए ताकि खबर के मुंतशिर होने से पहले वो खुद कूफे पहुंच जाएं।
2: बहुत अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ बेटी और अपने हवास को कायम रखो। जो भी नई खबर सुनो फौरी इत्तेफाक हो मुझे फौरन खबर दो, फौरन खबर दो।
3: पिदर, आप हसन इब्न अली को तो तन्हा नहीं छोड़ेंगे?
2: मालूम है, ये कैसा सवाल है?
3: मेरा मतलब बुरा नहीं था, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप उनकी किस तरह मदद करेंगे।
2: सोचना पड़ेगा, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करूंगा कि किस तरह से उनकी मदद की जाए।

0: घबराओ नहीं, जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है उसी तरह सारी चीजें अपनी नजर में रखो।
1: जी अच्छा।
0: हाँ, कुछ नाम तुमने बतलाए थे, एक हर्ब में अब्दुल्ला था और ये दूसरा कौन था?
1: साले पिसारे हारिस।
0: हाँ हारिस। इन दोनों पर एतमाद ना करो, ये लोग उबैदुल्ला और किंदी से अलग नहीं है। उस हारिस को मैं खूब पहचानता हूँ, ये माविया के जासूस में एक जासूस है, खुद को अबा मोहम्मद के मानने वालों के उनवान से उनसे नजदीक हो गया है और मौके के इंतजार में है कि कब कारी जर्ब लगाए। ये दोनों आदमी भी उसी के हैं, याद रखो उसी के हैं।
1: जी अच्छा।
0: अब तुम चली जाओ।

0: अच्छा, उसने क्या कहा? कोई खबर लाई?
1: ऐसी खबर लाया हूं कि अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाएं।
0: कैसी खबर?
1: जबान मेरी मुफ्त में नहीं खुलेगी। अगर सुनना चाहते हो तो सिक्कों से मेरा मुंह भरना पड़ेगा।
0: बकवास कर रहे हो, खोलो अपना मुंह।
1: महाल है कि मैं अपना मुंह खोलूं?
0: ये मजाक का वक्त नहीं है, बताओ क्या हुआ।
1: अभी मेरी बेटी जौदा, जो अबा मोहम्मद की बीवी भी है, जो उसी घर में रहती है जो घर में बहुत ज्यादा काबिल एहतराम और मुर्द तवज्जो भी है, उस घर में कोई भी उससे ज्यादा काबिल तवज्जो नहीं है।
0: क्या खुराफात बक रहे हो, बताओ क्या खबर लाई है।
1: खबर यह है कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास 1 करोड़ दरहम के इवज माविया इब्ने अबू सुफियान के लश्कर से मिल गया है और हसन इब्ने अली को तनहा छोड़ गया है।
0: अशस, वल्लाह अगर मजाक किया है।
1: मजाक नहीं है, खबर में हकीकत है, मुतमईन रहो।

0: अब हमें क्या करना चाहिए?
1: शिव, अब हम क्या करें बताओ ना।
2: हालात अजीब तरीके से करवट लेंगे, अहम इत्तेफाक होगा। अब तुम लोग जाओ, हालात पर नजर रखो, जाओ।
1: ठीक कह रहे शिव, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें शहर के हालात पर नजर रखनी चाहिए। अब क्या होगा शिव?
2: जाओ, सिर्फ हिफाजत करना, हम बाद में फैसला करेंगे। चलते हैं।
3: कहाँ?
2: अमरीन ने हुरैस के घर।

0: मोहम्मद।
1: आओ मोहम्मद, क्या बात है? उबैदुल्लाह फरार हो गए।
2: क्या कहा?
1: लश्कर को छोड़कर बताए बगैर भाग गए।
2: उबैदुल्लाह
0: उबैदुल्लाह
2: याकूब और कैसे खबर करते?

0: Amr, Hajar, कहाँ हो? खबर लाया हूँ कि 10,000 सिक्कों की कीमत रखती है।
1: अगर हमें मालूम हो तो उसकी कोई कीमत नहीं।
0: तुम्हें मालूम है
1: कि उबैदुल्ला मुआविया से जा मिला? तुम्हारी खबर यही है ना पिसर जिल जौशन?
2: अच्छा तुम जानते हो, ये खबर तुम्हें कब मिली?
1: कुछ देर पहले, लेकिन तुम दोनों से पहले। और अगर तुम चाहो तो उबैदुल्लाह के फरार से ज्यादा अहम खबर तुम्हें दे सकते हैं।
0: कौन सी खबर?
1: लेकिन पहले कीमत तय होनी चाहिए। उसकी कीमत शिम्र के बेतहाशा ऊंटों में से सिर्फ 1,000 ऊंट हैं। मामला कबूल है?
0: हजार, अभी तुम्हारे अमीर की हुकूमत मुस्तहकम नहीं हुई कि दूसरों के माल पर नजर डाल रखी है।
1: मुस्तहकम हो जाएगी शेमर, मुस्तहकम हो जाएगी। अभी अभी मुगैरा दो उमवी शख्सियतों के साथ बहसियत नुमाइंदे अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान सुलह की पेशकश के साथ अमीर का मोहरशुदा सफ़ेद कागज़ लेकर मदाइन की जानिब रवाना हो चुके हैं।
2: अमीर का मोहरशुदा कागज?
1: हाँ, इसका मतलब यह है कि अमीर हसन इब्ने अली की तमाम शरायत को कबूल करने के लिए तैयार हैं।
0: मुगैरा के सुलह के पैगाम के साथ मदाइन में कदम रखते ही खवारिज बलवा खड़ा कर देंगे।
2: माविया को हमें इस बात से आगाह करना चाहिए ताकि हम उसके वास्ते रास्ता हमवार कर सकें।
1: इत्तेफाक से बिल्कुल इसके बरक्स, अमीर ने इब्ने उमेर को खत लिखा है कि सुलह का बहाना बनाकर फितना बरपा कर दो।
0: नहीं समझ सका।
2: दरअसल ये काम बेहूदा और बेकार है। इम्कान नहीं कि हसन इब्ने अली माविया के साथ सुलह कर लें।
1: यही वजह है कि अमीर ने अपना मोहरशुदा सफेद कागज भेजा है।
0: सच बात बताओ कि हकीकत क्या है?
1: देखो, हकीकत का तो मुझे भी इल्म नहीं। हमें इंतजार करना चाहिए ताकि अमीर के कासिद मदाइन पहुंच जाए। शायद अब तक पहुंच चुके होंगे।

0: Salamun aleykum.
1: Aleykum.
2: Teşrif layi.
3: हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे,

0: करेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे,
1: हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, माविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे।
2: हुजर, अदी, मुगैरा इधर क्या कर रहा है? मुआविया की जानिब से अबा मोहम्मद के लिए क्या पैगाम लाया है?
3: हमें क्या मालूम, वो हसन इब्ने अली से बात करने आया है।
4: हसन इब्ने अली ने क्यों हिंदा की औलाद के खासियत को कबूल किया?
5: क्यों कबूल किया?

0: करने से कोई फायदा नहीं।
1: वही तो हो तुम लोग जिसने खुशी से हसन इब्ने अली के हाथ पर बयत की थी। अब तुम्हें क्या हो गया है नामर्दो, पल पल में क्यों रंग बदलते हो?
0: हसन इब्ने अली मुआविया के साथ सुलह करना चाहते हैं, समझे? मुआविया के साथ सुलह करने का सोच रहे हैं।
2: जो भी मुआविया के साथ सुलह करे उसका खून मुबाह है।
3: फिर से खवारिज ने फितना खड़ा कर दिया।
0: खुदा लानत करे खवारिज पर।
4: खवारिज तो सिर्फ फसाद डालना जानते हैं।
5: क्या तुम लोगों ने बेइज्जत नहीं की?
3: खुदा की लानत हो तुम पर, तुमने इनके बाप अली के साथ भी यही किया जो इनके साथ कर रहे हैं।
0: हम मुआविया के साथ सुलह नहीं करेंगे।
5: चलो हमला करो,
0: आग लगा दो, जला दो।
2: अरे तुम सुलह करते हो? हमला करो।
0: आग का रास्ता कहाँ है?
2: दो, फेंक दो, लगा दो आग।
5: अबा मोहम्मद कह रहे हैं मत लड़ो, अपने भाइयों को कत्ल ना करो।
2: लगा दो, लगाओ आग, मार डालो। जला दो इनको, खाकिस्तर बना दो बिल्कुल। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो।
5: अबा मोहम्मद कह रहे हैं अपने भाइयों को कत्ल मत करो।
3: हसन इब्न अली के खेमे को जला दो, जला डालो।
0: मुझे हसन इब्न अली की अबा मिल गई है।
2: चलो चलो,
0: हसन इब्न अली की अबा है ये। देखो हसन इब्न अली की अबा लाया हूँ, उनका खैमा हमने जला दिया। हसन इब्न अली की अबा मेरे पास है।
6: हसन इब्न अली की अबा है मेरा सलाम उन तक जरूर पहुंचाना।
0: जाओ जाओ, उनकी मदद करो, जाओ जाओ।

सुना सुना तुम लोगों ने, सुना उस मलून ने क्या कहा, क्या समझा उसकी बातों से? उसकी बातों से सुलह और साजिश का पता नहीं लगता? क्यों शोर कर रहे हो? शोर ना करो, आराम से बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, शोर कर...

0: अभी अभी अबा मोहम्मद का एक कासिद इस पैगाम के साथ आया है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की नियाबत में अबा मोहम्मद के दीदार के लिए जाऊं।
1: क्या क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन मुझे कह रहे हो?
0: जी अमीर।
1: यानी अबा मोहम्मद ने तुमसे कहा है कि मेरी नियाबत में उसे देखने के लिए फिर से आ जाओ?
0: जी अमीर।
1: नहीं समझा।
0: खबर लाए हैं कि मदाइन की छावनी पर फितना और फसाद बरपा कर दिया गया है। आपका अपना ही एक जासूस था।
1: फिर से तुम्हारे जासूसों ने झूठी खबर लाई।
0: नहीं सरकार, मेरी मुराद यह है कि इस फितना और फसाद के बाद शायद अबा मोहम्मद आपके साथ सुलह के हक में बैठ जाए।
1: तू अपनी तरफ से बकवास न कर। सुलह की कोई बात नहीं। वो सुलह नहीं चाहता था। वो हमसे हरगिज सुलह नहीं करेगा। ये झूठ तो हमने गढ़ ली थी कि वो सुलह चाहता है। अब इसके इस पैगाम में जरूर कोई हिकमत है।
0: मगर जासूस ये खबर लाए हैं कि
1: नाम न लेना अपने जासूसों का।
0: मेरा इरादा नहीं था कि आपको रंजीदा कर दूं अमीर, लेकिन अगर तय हो जाए कि मैं वहां जाऊं और अबा मोहम्मद मुझसे सुलहनामे पर दस्तखत करवाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
1: वो जो भी चाहे कबूल करना, उसकी हर शर्त मान लेना।

0: हमें जल्दी करना चाहिए।
1: हाँ, इन्हें हलाक कर देना चाहिए।
0: इससे पहले कि वो माविया के साथ अहद करे, उन्हें मार कर घोड़ों की तरफ भागना। मैं तलवार से उनके साथियों का रास्ता रोकूंगा ताकि वो तुम्हारा पीछा ना कर सकें। चलो।
2: जज़ीरतुल अरब में दीन इस्लाम की बुनियादों के मुस्तहकम होने से लेकर आज तक वो इतनी बड़ी

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: देख रहे हो दुनिया के सब पर नाकाबिले भरोसा है मुख्तार मैं अब्दुल्लाह उमर का बेटा जो दुनिया ए अरब का खलीफा था जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे आज एक नादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ
2: शेख आपकी शख्सियत ना तो हल्की थी ना है मैं चाहता हूँ आप आज इरादा कीजिए हम इब्ने जुबैर को हटा सकते हैं
1: नहीं मुख्तार नहीं जो बेहुर्मती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन के लिबास के साथ की है उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है जो बार एक दिन उमर के कंधों पर था आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे के दीन है खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है
2: खुदा के दीन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है आखिर सब्र कब तक शेख आपने बैत न करके पहला कदम उठा दिया है बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है इसका सबूत मेरी आजादी आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया
1: ठंडे हो जाओ मुख्तार मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार बादशाह बादशाह होता है उसकी हुकूमत की वसत अहम नहीं होती
3: फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए उमर उस्मान अली
1: सफिया तुमने हुसैन को नहीं गिना हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था मैं तो मुख्तार पर हैरान हूँ अभी खून हुसैन इब्ने अली खुश्क नहीं हुआ है हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी एक तरफ से रसूल खुदा से नस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे उनके साथ क्या किया गया आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी शोलों के तो आसार ही नहीं इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब हैं शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है
3: तुम चाहते क्या हो मुख्तार तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो
2: मैं खून हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ और मुझे इसमें शक नहीं कि खून हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा
1: जाओ ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ
2: मैं खुद को आपका मकरूज समझता हूँ सो कर्जा चुकाने आया हूँ
3: कर्ज चुकाना चाहते हो बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो इसे इसके जानमाल से मत उठाओ हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत का

0: सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या?
1: मजदूर?
0: अरे तख्ता, तख्ता नहीं चाहिए।
2: सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार?
3: ये कैसे हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं?
2: जब घर बैतुल्ला है तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन वसहलन अबू इसहाक।
3: अहलन वसहलन।
2: इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अम की जगह है, किससे डर रहे हो?
3: मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं।
2: ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमीय जमरा को बोझो कीने में तबाह मत करना।
3: आज मेरा रमीय जमरा रमीय यजीद है दोस्त।
2: मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तोहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमीय यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है।
3: हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया?
2: मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफीन को पनाह दी हुई है, कुछ भी कर ले वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तुम्हारा मुंतजर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो।
0: जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज्यारत का शर्फ पाएंगे जो है आबिद इबादत गुजार, दुश्मन कुफार, मुजाविरे खाना यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे सहाबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सलवातुल्लाह।
3: हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की जियारत के मुश्ताक हैं।

0: मजाक का खेज है, मसखराबाजी है।
1: कौन सी चीज मसखराबाजी है?
0: यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान है नबी? ये तख्त तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबुवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप?
1: नहीं नहीं नहीं मुख्तार, नहीं। नबुवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबुवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालायन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं।
0: खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजजात की जरूरत नहीं।
1: ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहां गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजजात की हिकमत जानते तो इन्हें मसखरा ना कहते।
0: जहां तक मैं जानता हूं, हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा।
1: तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है?
0: ना देखा है और ना ही देख सकता है।
1: मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूं, इस बात का इकरार करता हूं कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों के सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनू उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूस से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ,
0: तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है? तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं?
1: मुझे सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दयानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबा है।
0: अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक है, मगर बहस भराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो?
0: उतनी जानता हूँ कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं।
1: बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत में झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरण जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बात करके बहस खत्म करो।
0: एक शर्त है।
1: शर्त? कौन सी शर्त?
0: इराक अरब।
1: तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। تمہاری ہوشیاری واقعاً لاجواب ہے مختار.

हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हां मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं, अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया।

0: आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों?
1: इराक है अरब।
0: इराक में कहाँ?
1: बसरा।
2: ये तुम हो अबू इसहाक?
0: हाँ, और आप?
2: मैं हानी इब्ने जुब्बा वादाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकई तुम ही इब्ने मरजाना की कैद से भाग सकते थे, मुझे यकीन नहीं आता था।
0: कूफा की क्या खबर है?
2: एक नागहानी आफत ने इब्ने मरजाना की घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सराइयत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे।
0: इब्ने मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ, एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी।
2: सर आंखों पे।
0: कूफा कब जा रहे हैं?
2: यमन के काफिले के इंतजार में हूँ, खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा।
0: मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ।

0: देर कर दी तुमने कासिद, दो तीन दिन ताखिर कैसे हो गई?
1: हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे।
0: भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे?
1: एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे।
0: मरने वाला कौन था?
1: अबू कैस।
0: अबू कैस उनका बंदर?
1: जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था, अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था।

0: बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले?
1: जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़ सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे।
0: मशकूक मिल गया, उसने कार जुर्म किया।
1: चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था।
0: अबू कैस को घोड़ सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो, मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदावंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस।
2: जी अमीर।
0: खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना।
1: जी अमीर।
0: चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीन क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान।
3: इजाजत है अमीर।
0: क्या हुआ, फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीर का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्ला, तुम खुद खलीफा से बात कर लो।
4: मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर।

0: खलीफा के वादे यानी बकवास, हुकूमत रे हवा हवा, उमर साद गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पर थूकूं?
1: क्या बात है जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा। बुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है?
2: मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर।
1: हक बनता है उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
3: जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे।
1: नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक अरब और हिजाज ताइफ के बानफूशियों में से है, समझ रहे हो मेरी बात?

0: जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी
1: ज्यादा खतरनाक है।
0: तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ, हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो, उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि इजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या है?
2: यजीद देव ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है।
0: इतने मरजाना क्या बेतुकी सोच है, मग ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है।

0: कहां गुम हो मुख्तार?
1: ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी मां दुम्मा अल आजम के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अरसा अपनी मां की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साये को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए।
0: तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो, तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहां तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी, वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे।

0: मैंने भी उसी गिरा कदर मीरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज कर रही इसलिए नहीं हुआ हूँ कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं।
1: तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे, तुम इस नामरे हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं, बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ।
0: मगर कैसे माँ, वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है, हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं, उसे कैसे रुसवा करूं?
1: तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ।
0: खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है।
1: तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया?
0: माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक्तदार मिल गया तो ये लोग खूने हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं।
1: थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा।
0: माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो?
1: अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था, तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा।
2: लश्कर यजीद में मुस्लिम इब्ने उकबा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक अस्हाबे रसूल और यहां तक कि मजारे रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उकबा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी में मक्के की तरफ चल पड़ा।
3: ए बैतुल्लाह के जायरीन, ए दिलों के किबले के जायरीन, ए काफला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मजार रसूल अल्लाह की हुरमत भी पामाल कर दी ताकि ये साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयत वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बाखुदा कसम अब्रहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ऐ हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमिए जमरा, रमिए यजीद और रमिए सिपाहे यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती।

0: न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है।
1: ताइफ की जमीन जरखेज है बिनती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता।
0: मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं।
1: इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिनमती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है।
0: नहीं ना रे, अच्छा होता, मेरा तो पेट भर गया।
1: खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिनमती, तुम्हारे लिए खुशगवार है।
0: अजब खूनी दिल है बागबान का।
1: मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ।
0: तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पसीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई।
1: तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता।
0: माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था?
1: तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो।
0: मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया।
1: खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादर मताल है या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है?
0: मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो।
1: ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक्तदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं।
0: ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में झगड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है।
1: तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो, तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती। और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ, तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए।
0: मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक्तदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो?
1: कहां इतनी जल्दी?
0: यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं? तुम क्या करोगे?
1: मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो आयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा।
0: हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।

0: वाह भाई, अबू इसहाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या उम्रे के लिए?
1: अजीब जानवर हो तुम इब्ने सहल, ये खुमरा से क्या मुराद है?
0: मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुर रौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो।
1: तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्ने सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो।
0: कौन सा कासिद, कौन सा पैगाम? क्या सकफी शेर को तवाफ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है?
1: मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम, और खुदा अरहमर रहीमीन है।
0: इस बात के मुनकर पर लानत, खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होके खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे?
1: हैफ के तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़ दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक्तदार और रियासत के नशे ने इब्ने जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती।
0: इब्ने जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार, आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते, क्यों उससे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए?
1: तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की।
0: इतनी सारी शरायत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले? अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो?
1: हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ, या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है।
0: खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था।
1: हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मजाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं।
0: मेरी सालिसी कबूल है?
1: क्या करवाने के लिए?
0: तुम्हारे और इब्ने जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे?
1: इब्ने सहल, मेरी शर्त वाज़ह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है, मुझे सालिस नहीं चाहिए, ज़ामिन चाहिए।

दर्द दिल का इलाज करता है। इश्क इससे समाज करता है। करबला में वो कल अकेला था, आज हर दिल पे राज करता है। शहंशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन, सिर्फ तुझसे दो।

0: मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हर साल करबला में आपके रोजे की ज्यारत करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल करबला जाने वाले काफिलों को हसरत से देखते हैं और हर जायर से रो रो कर कहते हैं, मेरे मौला को मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना।
1: मौला मौला मौला मौला करबला बुला। मौला मौला मौला मौला।

0: ये तुमने क्या किया?
1: ये मुआविया के जासूसों का सरगना है। ये दूसरी दफा थी जो इसने अबा मोहम्मद की जान लेनी चाहिए।
0: सब्र से काम लो।
1: हमारे मोहला को हमारी आंखों के सामने जर्ब लगाई और हम कुछ ना कर सके। हसन इब्ने अली को चंद खाइन और मुनाफिक लोगों ने घेर लिया है। पता नहीं चलता कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है।
0: अब मोहला की तबीयत कैसी है?
2: हाँ, सब कुछ ठीक है।
1: ये घर महफूज है,
2: खतरे की कोई बात नहीं है।
1: अगर अबा मोहम्मद को कुछ हुआ तो मैं
0: मोहम्मद,
1: अब मुझे किसी पे भी एतमाद नहीं है।
2: जवान, मैं तुम्हारा हाल समझता हूँ। मैं भी अली इब्ने अबी तालिब का चाहने वाला और खानदान रिसालत का शैदाई हूँ। इत्मीनान रखो,
0: सब्र से काम लो। ये सईद सकफी है जो मदायन का हाकिम था।
1: मेरे लिए फर्क नहीं करता कि कौन है, मुझे किसी पे भी एतमाद नहीं।
0: अली मुर्तजा ने इसे मदायन का हाकिम बनाया था। यह हसन इब्ने अली के बावफा साथियों में

0: से।
1: ये उसका जाहिर है, देखना चाहिए उसका बातिन क्या है। अमान हो इंसानों के बातिन से।
0: सिर्फ खुदा लोगों के बातिन को जानता है, बस।
2: गौर से सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूं। किसी को हक नहीं बगैर इजाजत उस घर में दाखिल हो। अब जाओ।
3: मत खोलिए,
2: दरवाजे बंद कर दो। खाएं, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? यह हराम गजा नहीं है, यह हसन इब्ने अली की तरफ से है। इत्मीनान रखें, इस मकान को हसन इब्ने अली का मकान समझें, मेरा मकान नहीं है। मेरा जान व माल सब कुछ अली का है और औलाद जहरा का है। मेरे मौला की तबीयत कैसी है?
4: खंजर हड्डी तक सरायत कर गया है, लेकिन इमाम वजू करके नमाज में मशगूल हो गए हैं। हातिम, इमाम से कहो आराम करें, वरना खून का बहना बंद नहीं होगा।
2: मैं हसन इब्ने अली से सब कुछ मांग सकता हूं, सिवाय उसके जो तुम चाहते हो। बस अब जाओ।
5: अबा मोहम्मद ने कहा है निगहबान की जरूरत नहीं।
2: निगहबान के बगैर
5: इताअत करो सईद।
0: ये कैसे मुमकिन है?
2: देखो जवानों, अगर निगहबानों को हटा दिया जाए तो उनकी हिफाजत कैसे होगी? ठीक है, फिर उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद तलवार लेकर उनके घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा।
5: मोहम्मद, हसन इब्न अली ने कहा है कि सिपाहियों से कहते हैं कि अब कोई जंग नहीं है, सब अपने घर लौट जाएं। अहमद, जैसे ही मतला साफ हो जाए तुम मस्कन की जानिब निकलो और कैस इब्न साद से कह दो कि हसन इब्न अली ने कहा है कि फौज को छुट्टी दे दें और माविया की फौज से टकराव न होने दें, और कहो कि हसन इब्न अली माविया से सुलह की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी रात को इमाम के करीब तरीन दोस्तों ने इमाम की मुनाजात सुनी। खुदावंदा, मैं कैसे किसी से डरूं जबकि मेरी उम्मीद सिर्फ तू है, और कैसे किसी चीज की परवाह करूं जबकि तुझ पे भरोसा किया है। बारे इलाहा, मुझे बुर्दबारी अता कर और अपने दीन और कुरान को दुश्मनों पर कामयाबी अता कर। अगरचे ये तंग नजर लोग तेरी नुसरत और कामयाबी को देख नहीं सकते, लेकिन मैं तो अपनी निगाहों से तेरी मदद देख रहा हूँ और मुस्तकबिल में तेरे दीन और कुरान और तेरे पैगंबर की सुन्नत की कामयाबी पर पूरा यकीन रखता हूँ और एक लम्हा भी तेरी नुसरत के वादे पर शक नहीं करता। तुमने खुद हसन इब्न अली को कहते हुए सुना?
6: नहीं, अली इब्न हातम ने बताया।
5: मैं यकीन नहीं करूंगा, उन्होंने मुगैरा को पैगाम भी भेजा है। ये हो नहीं सकता, अबा मोहम्मद माविया से सुल नहीं करेंगे।

0: अम्र, मगर तुमने नहीं कहा था कि वो सुलह नहीं करेगा।
1: सुलह नहीं करनी चाहिए थी, मैंने हर रुख से दिक्कत के साथ जांच लिया था, इम्कान नहीं था कि सुलह करे।
0: फिर कैसे इस सुलहनामे पर दस्तखत कर दिया?
1: नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
0: अब तुम क्या समझते हो?
1: मैं कुछ नहीं कह सकता।
0: जाओ बाहर, बाहर। अम्र, क्या मुझ पे कोई खतरा लाहक है?
1: नहीं मालूम, इस वक्त मेरी अक्ल काम नहीं कर रही।
0: मुझ पे अचानक हमले का इरादा तो नहीं होगा?
1: नहीं।
0: फिर तो क्या सोच के उसने ये दस्तखत कर?
1: क्या बताऊं जब खुद नहीं जानता?
0: झूठ बोलता है तू शैतान, सब कुछ जानता है। ये सारे नक्शे तूने बनाए हैं, तू मुझे यहां तक लाया। अब भी तू ही मुझे इसका जवाब बताएगा, वरना अपने अजदाद की कसम मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगा।
1: छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर।
0: घोष जाने न दे इसे।

इब्ने आस, कुछ आराम कर लो, अच्छी तरह सोचो। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम हल न कर सको। मैं मुतमईन हूं तुम इसका मुनासिब जवाब दे सकते हो। सुल्हनामे का जवाब अपनी खोपड़ी को इस्तेमाल में लो। क्यों हसन इब्ने अली ने जल्दी से मान लिया? दोबारा गौर करो, शायद तुम्हारा जवाब इसी खाल के टुकड़े में मिल जाए। शायद इन्हीं जुमलों में पोशीदा हो। गौर से देखो, अल्फाज के पीछे कुछ मौजूद हो जो हमारी निगाहें न देख पा रही हों।

0: हाँ आम्र, जवाब मिल गया।
1: नहीं अभी नहीं, शायद जवाब इससे भी ज्यादा आसान हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। शायद ये खुद अहदनामा ही हमारा जवाब हो। देखो

0: क्या तुम वाकई इस अहदनामे पर अमल करोगे?
1: कोई पूछने की बात है, मालूम है कि अमल नहीं करूंगा।
0: हसन इब्ने अली को भी मालूम है।
1: तो क्या है?
0: यही तो है, उन्हें पता है कि तुम कभी भी अमल नहीं करोगे। अब वो इस तरह चाहते हैं कि मुसलमानों के सामने तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो।
1: मेरा चेहरा?
0: हाँ, वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन का खिताब न दो। क्योंकि तुमने ये खिताब दिया है इसलिए अब तुम रुस्वा हो गए।
1: रुस्वा?
0: वो तुम्हें मजबूर करते हैं कि तमाम मुसलमानों की हर जगह हिफाजत करोगे और उनका एहतराम करोगे, मगर उन्हें मालूम है कि तुम मुसलमानों को महफूज नहीं रख सकते। इस तरह सभी लोग तुम्हें अच्छी तरह जान लेंगे।
1: जान लें
0: तो फिर तुम जैसा अहशकर मुसलमानों पर किस तरह खिलाफत करेगा?
1: ठीक है, मैं हित को तोड़ के हुक्मरानी करूंगा, क्या हो जाएगा?
0: अब कुछ नहीं होगा, बल्कि एक मुद्दत के बाद तुम्हारे चेहरे को लोगों के सामने इस तरह बेनकाब करेंगे कि दोबारा उनके कयाम करने की राह हमवार हो जाए।
1: तुम कहना चाहते हो कि वो मेरे खिलाफ दोबारा मुहिम चलाएगा?
0: शायद नहीं, ये सोच गलत है। तुम बेफिक्र रहो उस वक्त तक, अभी बहुत वक्त है, हम बैठकर ये खतरा भी सर से टाल देंगे। अब तो इससे कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए, मेरा हाल अच्छा नहीं है, मुझे आराम की जरूरत है।

0: नहीं कैस, अबा मोहम्मद के हुक्म की सरपेची न करो।
1: अबा मोहम्मद ने मुझे हुक्म नहीं दिया है,
0: मुझे पैगाम भेजा है।
1: पैगाम उन्होंने खुद नहीं भेजा है। सईद, अबा मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक मेरे मरने के बाद लश्कर के सालार तुम होगे।
2: Hey! Hey! Hey!

0: कोई नहीं, अकेला है, चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा है।
1: उसे मारना नहीं, हुक्म दो कि उस पर कोई तलवार न चलाए। लो उसे बताना, वो हसन इब्न अली की दस्तखत पहचानता है।
2: मैं हूं कैश, आओ मेरे मुकाबले के लिए, चलो आ जाओ। आ जाओ, निकाल दो अपनी तलवारें।
0: कैश, कैश, कैश, ठहरो। हसन इब्ने अली मुआविया इब्ने अबी सुफियान के साथ सुलह करना चाहते हैं। हमें इजाजत नहीं कि तुम्हारा सत्तम से जुदा कर दे।
2: तुम झूठ बोल रहे हो।
0: तुम हसन इब्ने अली के दस्तखत पहचानते हो?
2: अच्छी तरह पहचानता हूं।
0: चलो इसे देखो।

0: तुम लोग यही इंतजार करो, देखो तो इधर क्या हो रहा है।
1: खाने खुदा की ज्यारत अमीर अल-मोमिनीन को मुबारक हो।
0: तुमने जो खत लिखा था उसके क्या मानी है?
1: मुझे उम्मीद है कि अमीर अल-मोमिनीन हजारों दफा सफर हज का शरफ हासिल कर सकेंगे।
0: बकवास बनकर उस खत का बता।
1: वो खत तो मैंने जिंदान से अमीर अल-मोमिनीन के लिए भेजा था।
0: क्या जिंदान से? जिंदान से?
1: हाँ अमीर, जिस दिन आप शहर से निकले उसी दिन अमीरजादे ने हुक्म दे दिया कि मुझे जिंदान में डाल दिया जाए।
0: क्यों?
1: मैंने उनसे दरखास्त की थी कि ऐसे काम ना करें जिससे लोग अमीर अल-मोमिनीन के खिलाफ हो जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदान में डाल दिया और मेरे मुंह पे कोड़े मारे।
0: क्यों, क्या कर रहा था?
1: माजरत चाहता हूं, आप खुद उनसे पूछ लें।
0: मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
1: मुझ पे रहम कीजिए अमीर, अमीरजादा बड़ा संगदिल है। उसने कहा है अगर मैंने जबान खोली तो मेरा सर तन से जुदा कर देगा। लगातार 10 दिन जिंदान में मैंने कोड़े खाए हैं। और अगर उम्मे यजीद ना होती तो मैं अब तक हलाक हो चुका होता।
0: साफ साफ बता दीवाने, वरना मैं खुद ही तुझे हलाक कर दूंगा।
1: अमीरजादे ने उस नसरानी लड़की को बादशाही खानदान का लिबास पहनाया और फिर खदम व हशम के हमराह महल से बाहर निकले और अवाम के दरमियान आ गए।
0: कौन सी नसरानी लड़की?
1: वही नसरानी लड़की जिसको अमीर ने महल से बाहर निकालने का हुक्म दिया था।
0: हाँ, फिर
1: शहर के चंद लोगों ने इतराज किया। अमीरजादे ने उन सबको बांधने का हुक्म दिया, गालियां दी और खुद से उनको कोड़े लगाए। उस हालत में कि नशे से लड़खड़ा रहे थे और इनके मुंह से शराब की बू आ रही थी।

क्या हो रहा है? बाहर लोग जमा हो गए हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि अमीर लौट आए हैं।

0: 3 दिन बाद सिपाहियों को भेजा कि एक बड़े आदमी की बेटी को उसके घर से उठा के महल में ले आए।
1: उसके भाइयों ने मुखालिफत की,
0: आपस में झगड़ा हो गया और फिर 2 आदमी मारे गए।
2: तू कहां मर रहा था?
0: मैं जिंदान में था अमीर।

0: son.
1: Mekatahurukja, Bosr, pakadu se. Kiski ijazat se nasrani ko mahal mein laya?
2: Amir, mujhe maaf kar dijiye. Mujhe maaf kar dijiye.
1: शहर में आग लगाएगा, मेरे मुशावर को कैद में डालेगा, तेरी ये मजाल आज तुझे मैं बताता हूँ, मेरी खिलाफत को बर्बाद करेगा तू, मेरे मुशावर को कोड़े लगाता है,
2: मुझे ना मार,
1: मैं तुझे कोड़े लगाऊंगा, लेखा, पकड़ो उसे।
2: अमीर, ना मारे अमीर, अमीर मुझे माफ कर दीजिए। फिर से नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए।
1: नहीं, जब तक तुझे शलाख का मजा नहीं लगेगा तुझे जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे, पकड़ उसे। पकड़ उसे, मैं कहता हूं पकड़ उसे, जाओ उसे पकड़ के ले आ। बेवकूफ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, अब सिर्फ एक बार और कहूंगा, उसे पकड़, अगर तूने इताअत न की तो तेरे सर को जल्लाद के हवाले करूंगा।

0: अमीरजादे, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी जान की कसम खुद अमीर के पास चले जाओ और इस हुक्म पर अमल करने से मेरी जान छुड़ा दो।
1: ए ए अहमक, देख नहीं रहा है? वो मुझे कोड़े लगा रहा है।
0: अमीरजादे,
1: खबरदार अगर तूने मुझे छुआ।
0: मैं मजबूर हूँ।
1: अगर अमीर ने मुझे कोड़ा लगाया तो मैं तुझे नाबूद कर दूंगा।
0: जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं।

0: dummy.
1: किसने तुम्हें इजाजत दी है यहाँ आने की?
2: माफ करना अमीर, जब मैं अपने बेटे यजीद की आहो फुगा सुनती हूँ तो इतना बदहवास हो जाती हूँ कि इजाजत का इंतजार भी नहीं करती।
1: यजीद तुम्हारा बेटा? देखा ये औरत क्या कह रही है, जरा फिर से कहो क्या कहा है।
2: कुछ नहीं, सिर्फ अपने बेटे को मार पीट गाली गलौज से दूर रखना चाहती हूँ।
1: देखो इस औरत को किस मकरो हीले से आलम को धोखा देना चाहती है।
2: माजल्ला के अमीर के सामने मकरो हीला करूं?
1: अपना नाम तो बताओ।
2: अमीर मेरा नाम जानते हैं,
1: भारी जबान से सुनना चाहता हूं।
2: उम्मे यजीद।
1: उम्मे यजीद, तुझे किसने जन्म दिया? मुझे बता जल्दी। मैसूम, तुम्हारा नाम मैसून है?
2: नहीं अमीर।
1: तेरी मां किस कबीले से थी?
3: बनी कल्ब।
1: तुम बनी कल्ब से हो?
2: नहीं अमीर।
1: बनी कल्ब मुसलमान है?
3: नहीं, नसरानी।
1: तो तुम नसरानी हो?
2: नहीं तो मुसलमान हूं।
1: तो तुम उसकी मां नहीं हो। अब ऐसे धोखे से बाज आ जाओ और उसे अपने हाल पे छोड़ दो।
2: सच कह रहे हो, मेरा नाम मैसून नहीं है और मैं बनी कल्ब से भी नहीं हूँ, और यजीद मेरे बतन से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसने मेरा दूध पिया है और मेरी आगोश में सोया है और मेरी आवाज पर आंख खोली है।
1: ये तो हर कनीज का काम है।
2: और मैं वही कनीज हूँ जो अपने मालिक को पूछती हूँ।
1: मुझे पूजा करती हो?
2: अमीर का अपना मकाम ऐसा है कि तमाम मुसलमान पूछते हैं, लेकिन मेरी इस बात का मकसद

0: अली इब्न अबी तालिब का मकान कौन सा है? मैं तो भूल गया।
1: वहां है।
2: उसने हमारी तरफ इशारा किया।
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हसन इब्न अली के मकान की तरफ इशारा था।
1: अली इब्न अबी तालिब और हसन इब्न अली उस घर में रहते थे।
0: मामलात को किस जगह हल करते थे?
1: वहीं पर।
0: अच्छा, वहां। तो ये मकान हकीकत में कूफे का दारुल खिलाफा था। हमारे महल से कम नहीं था। ऐसा तो नहीं कि तुम उस घर में रहना चाहते हो?
1: नहीं अमीर, अम्र इब्न हुरैस का घर मेरे दारुल खिलाफा के उनवान से मुंतखब कर लिया गया है।
0: हाँ, वो एक मुनासिब जगह है।
1: इस शहर में यही एक मुनासिब जगह है। इजाजत है? इजाजत दी।
0: अबू सुफियान का बेटा किस तरह अपने आप को रोब और दबदबे में रखता है?
3: तुम क्या समझते हो, उसकी अली मुर्तजा और हसन इब्न अली के साथ अदावत और दुश्मनी आखिरत की खातिर थी? नहीं, वो यही चाहता था। ईरान और रूम के बादशाहों के जाहो जलाल ने उसे अंधा बना दिया है।
0: हाँ, क्या हाल है? हाँ, अम्र इब्न हुरैस और हज्जाज इब्न अबजर, हमारे कदीम दोस्त, बताओ क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना?
4: दिन रात अमीर के लिए दुआ करते हैं।
0: ठीक है, जो मामला करार पाया है उस पे तो खुश हो ना?
4: कैसा मामला?
0: क्यों मामला? हसन इब्न अली के मुकाबले में जो तुमने मुझे मुंतखब किया और उसके बदले बहुत सा माल और दौलत पकड़ के मालिक हो गए, क्या ये हमारे माहिदे के अवज में अच्छा मामला नहीं था? अब अपनी होश और हवास ठिकाने रखो, एक और मामला दरपेश है। फरावान मिल्क और सरवत तुम्हारे इंतजार में, ऐसा न हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। हाँ आम्र, हमारे कारिंदों को जो तुमने अपना घर दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं।
4: हमारे पास जो कुछ है वो अमीर का सदका है।
0: घर की कीमत अदा कर दी है?
1: जी हाँ अमीर।
0: बेशक तुमने कई गुना ज्यादा हिसाब किया हो। हाँ, आखिरकार तुम तीनों को अपनी जिंदगी में अपने यारों के दरमियान देख रहा हूं। हमें नाज है मुद्दतों से अमीर की जिंदगी में। मैं खुश हूं कि तुम तीनों के चेहरे कूफे वालों के चेहरों से नहीं मिलते। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं?
5: यही मजमे में मौजूद हैं। जमाल अमीर से महजूज हो रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
0: अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा देख के उदास हो जाते हो?
1: मेरे अमीर, लोग मुंतजर हैं।
0: अहले कूफा, मुद्दतों से कुछ इराकियों की नाफरमानी, उनकी बगावतों और नाशुक्री की खबरें मुझे मिलती रही हैं।
6: मैंने तहमुल किया और उम्मीदवार भी था कि शायद तुम लोग अपनी हठधर्मी से बाज आ जाओ और राह सवाब इख्तियार कर लो। अभी चंद माह पहले जब हसन इब्न अली से सुलह की बात हो रही थी, इसी शहर की मस्जिद से मैंने तुम लोगों पे अपनी हुज्जत तमाम कर दी।

0: और निदा देकर कहा था कि तुम्हारा हाकिम बस मैं हूं, अगरचे तुम्हें अच्छा ना लगे। और ये भी कह दिया था कि अगर फितना करोगे तो बहुत ज्यादा खून बहाऊंगा और तुम्हारे खून का हर खतरा जो जमीन पे गिरेगा न सवाब दुनिया होगा और ना ही आखिरत में अजर मिलेगा। और बता दिया था कि तुम्हारी बेहतरी सिर्फ तीन चीजों में होगी जो मैं चाहूंगा। खिराज वक्त पे अदा कर दो, जंगी जवान मैं जब भी हुक्म दूं फौजी छावनियों को चले जाए, लेकिन सबसे अहम मेरे फरमा बरदार रहे। लेकिन इस मुद्दत में तुम लोगों से ऐसे आमाल सरसर हुए हैं कि मैं क्या कहूं। मुझे तो अपनी बख्शिश शफा तो मेहरबानी से पशेमान कर दिया। आए दिन तुम्हारा एक गिरोह इस मुल्क के गोशों किनार में मेरी नाफरमानी करता है और हर रोज मेरे सिपाही, मेरे मुतालिकीन और मेरे फरमानदार तुम्हारे गिरोह के जरिए हमला व तजावुज का शिकार होते। कोई वक्त ऐसा नहीं कि कूफे के गोशे व किनार में कोई नया हादसा ना हो जाए। बसरे में कभी सुकून नहीं रहा और मदीना हमेशा नाफरमानियों की साजिश में जल रहा है। और मैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से लोगों की जान और माल का मुहाफिज हूं और इन करतूत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी है, मजीद अब बर्दाश्त की हद नहीं रह गई। अब इसके बाद इराक की सरजमीन में आशूब बलवा नहीं देख सकता। यही वजह है कि जहमत और सख्ती से खुद को दमिश्क से यहां लाया ताकि बुलंद आवाज से सबको बाखबर कर दूं। मुझे उस वक्त की याद आ गई जब अली मुर्तजा इस शहर में आए थे पैदल बगैर जरा और शमशीर के। उनका घोड़ा भी बगैर जीन के था और हाथ में रकाब थामे हुए।
1: शहर के दरवाजे से बाहर घोड़े से उतर गए और सबको उतार दिया कि लोग शहर में सवारों को देखकर कहीं खौफजदा न हो जाए।
0: यह न समझना
1: अब इस वक्कार को देखो, चाहता है उनकी जगह पहुंच और खिलाफत को खत्म कर ले।
0: ऐसा नहीं है, अब सब जान ले कि सुलह नामा एक हैवान की खाल के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अब जो भी मैंने लिखा है और अहद किया है वो सब मेरे कदमों के नीचे। मैं इस सुलह नामे के तमाम मुफाद बातिल ऐलान करता हूँ और जान लो कि सुलह नामे के किसी भी मवाद और नुकते का पाबंद नहीं रहूंगा। हसन इब्ने अली के तरफदार और खवारिज के सरकश लोग समझ लें कि अब गर्दन उड़ाने का दौर आ चुका है। वो जान लें कि उनका माल हलाल और उनका खून मुबाह ऐलान करता हूं और उनकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो कभी भूल न पाएंगे। अब इसके बाद सिवाय इताअत के कोई उज्र और बहाना तहमुल नहीं करूंगा। क्या नाफरमानी का दौर गुजर चुका है। मैं यहां ऐलान करता हूं कि किसी पर रहम नहीं करूंगा। वस्सलाम।
1: मैं मुतमईन था कि अहदनामे को पैरों से कुचल देगा, लेकिन नहीं समझा था कि कुल्लम कुल्ला लोगों के सामने अपने अहद शिकनी का एतराफ करेगा। अब अबू सुफियान के बेटे से हमारे जंग का नया दौर शुरू होगा।
2: हम में से कोई हसन इब्न अली के पास जाए और उन्हें मुआविया की बातों से आगाह करे।
1: हर तुम चले जाओ।
2: नहीं, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे बेटों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है।
1: बचकाना काम ना करो, जाओ।
2: बचकानी काम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
1: अब चारा नहीं है, तुम दोनों में से कोई चले जाओ।
3: सईद, बेहतर है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रह के खबरें हासिल करूंगा। अब तुमसे मुलाकात मदीने में होगी।
1: बेहतर है कि शहर के दरवाजे बंद होने से पहले निकल जाओ।

0: Her रो रहे हो।
1: अब मुझे मालूम हुआ है कि क्यों हसन इब्न अली ने ऐसे हालात में इस शख्स के साथ सुलह की। कूफा के लोगों को देखो, क्या पशेमानी के आसार उनके चेहरे पर नहीं देख रहे? क्या नहीं देख रहे किस तरह सोग में बैठे हैं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इस लम्हे वो लोग अली ये मुर्तज़ा और हसन इब्न अली को याद कर रहे हैं? हसन इब्न अली ने ऐसा काम कर दिया कि ये लोग अपनी आँखों से अपनी आफियत तलबी, बेवफाई और दुनिया तलबी का नतीजा देख रहे हैं।
0: उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि माविया ने अपना हकीकी चेहरा सबको बता दिया।

0: शिम्र, कुछ परेशान लग रहे हो?
1: हाँ, मैं सोच में पड़ गया हूं कि कैसे अपने साथियों के बेशुमार सवालों का जवाब दूं। हमने अमीर की रहमत का उनसे वादा किया है और अब ऐसी बातें। सरदार, मैं तुमसे पूछता हूं, इन चंद माह की मुद्दत में हमसे कुछ नाफरमानी हुई है या कभी भी अमीर की साजिशों की मुखालिफत में हमने अपनी जबान खोली है?
0: मैं तो मदीने का हाकिम हूँ और अल्लाह के फजलो करम से अभी तक वहाँ पर कोई मुखालिफत नहीं है। रहा तुम्हारी वफादारी का सवाल, तो ये तो मुगैरा से पूछा जाना चाहिए।
2: हमने मुगैरा से फिलहाल बहुत बेहतरीन ताल्लुकात बना लिए हैं। मालूम है कितने फितने हैं जो हमारी वजह से खत्म हो गए हैं, और बहुत से बलबों का खात्मा हमारे यारों की वजह से हुआ है। सिर्फ मुगैरा को सबसे ज्यादा बेहतर हमारी खिदमतों की इत्तला है। अब कैसे अमीरुल मोमिनीन हम लोगों पे इल्जाम लगाता है?
0: मुझे इत्मीनान है कि हरगिज तुम्हारी इन बातों का मकसद ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन पर एतराज करो और उनकी बात को गलत साबित करो।
2: माज़ल्लाह माज़ल्लाह, मेरा तो सिर्फ ये मकसद है कि अमीर की हम पे नजर इनायत हो।
0: अमीरुल मोमिनीन,
3: मुझे हकीकत बताने दो सरदार। अमीर अल-मोमिनीन ने अराक के मुसलमानों के साथ उनके शायान शान गुफ्तगू नहीं की।
0: मुसलमान? कौन से मुसलमान? तुम मुसलमान हो इब्ने उमर?
1: सरदार, बात मुसलमानी की नहीं हो रही है, बात खिदमत अमीर अल-मोमिनीन है।
3: वगरना ऐसे लोग बहुत हैं कि जिनके बाप और खानदान रसूल अल्लाह के दुश्मन थे और आज अमीर अल-मोमिनीन के मुकर्रबीन में से हैं।

0: तेरा इशारा मेरी तरफ था, जलील कुत्ते।
1: बस करो, अमीर अंदर आराम फरमा रहे हैं और तुम झगड़ा कर रहे हो।
0: तू अपना मुंह बंद रख, छोटे मक्कार तगाबाज। तू मुझे समझाएगा? तू सोचता है मैं तुझे नहीं पहचानता हूं? तुम सब इन लोमड़ी सिफत लोगों से भी बदतर हो। एक तरफ हसन इब्ने अली के सामने अपनी गर्दनें झुकाते हो और दूसरी तरफ अपनी सस्ती और नाचीज खबरों को एक सौदागर की तरह हमें आकर बेचते हो। उसके बाद ऐसे अमीर की खिदमत का दम भरते हो जैसे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आज तुम सब पर सरकशी और नाफरमानी का इल्जाम लगाया है और मुझे अमीरुल मोमिनीन के वफादार और रमखार होने के नाते इस बात में जर्रा बराबर शक नहीं है। और अगर अमीर इजाजत दें तो याद रखो, एक एक करके तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा।

0: उम्मीद है कि अमीरुल मोमिनीन की थकान जरा दूर हो गई होगी।
1: मैं इतना ज्यादा थका नहीं हूं मेरे चचा की औलाद, सिर्फ मुगेरा से कुछ तन्हाई में हालात से बाखबर होना चाहता था।
0: हकीकतन अमीर की आज की गुफ्तगू ने सब कुछ रोशन कर दिया है। ये कमतरीन हकीर बंदा एक मुद्दत से इसका मुंतजर था, और आज बहमदिल्ला अमीर की जबान पर यह कलिमात जारी हो गए जिससे नमक हराम और खाइन लोगों के चेहरे पे नकाब हो गए।
1: क्या हुआ मरवान, क्या शमशीर तेज कर ली है? तुम्हारा इशारा हमारे दोस्तों की तरफ तो नहीं है जो यहां मौजूद हैं?
0: जाहिर में दोस्त लेकिन बातिन में दुश्मन। मुझे खुशी है इस बात से कि अमीरुल मोमिनीन के जानिसार नमखार आज के बाद मजबूर नहीं है कि उन लोगों के साथ मुसालहत करें।
1: मरवान, जो लोग यहां मौजूद हैं वो हमारे वाकई दोस्त हैं, ये अच्छी तरह जान लो।
0: हत्ता ये मुनाफिक लोग,
1: वो लोग अब मुनाफिक नहीं रहे, अब हमारे दोस्त हैं। सही है शिमर? जी अमीर, हम दिलो जान से अमीर अल-मोमिनीन के गुलाम और इराक के बेहतरीन इत्तेहादी हैं। हाँ, मुतमईन हो के ऐसा ही है।
0: लेकिन अमीर उल-मोमिनीन की आज की तकरीर।
1: मेरी आज की तकरीर की दलील कुछ और है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। जिसकी खातिर मैंने सफर की मशक्कत भी बर्दाश्त कर ली है और तुम्हें भी मदीने से यहां बुलाया है, ताकि अब इसके बाद हम सब की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। जान लो कि अमर इब्ने हुरैस और हज्जार इब्ने अबजर हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं।
2: हमारे लिए बायस फख्र है कि अमीर अल मोमिनीन की बात को गौर से सुने।
1: शिम्र, अशस और इब्ने उमेर, ये लोग हमारे नए साथी।
3: हम आपके गुलाम हैं अमीर।
1: और मेरा अजीज बुसर इब्ने अर्तात,
4: आपका कादिन।
1: और मुगैरा और मरवान मेरे वफादार साथी जो कूफा और मदीने के हाकिम हैं। मेरी नजर में तुम सब मेरे लिए बराबर के अजीज और मोहतरम। इसके बाद तुम्हारी दूरी और नजदीकी का मेयार सिर्फ मेरी इताअत और हुक्म बजा लाने की कैफियत पर होगा। इराक में नाफरमानी और शोरिश और इस्यान के मुतालिक मैंने जो कुछ भी कहा था वो एक बहाने के अलावा कुछ नहीं था। कम से कम मैं तुम इत्तेहादियों और बावफा यारों के सामने एतराफ करता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। न कूफे में, न बसरे में और ना ही मदीने में यहाँ किसी किस्म के शोरिश के वाकयात नहीं हुए। हाँ, जो मैंने हसन इब्ने अली के अहदनामे से मुतालिक कहा है ये हकीकत है। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं चाहूंगा कि इस सुलह के नविश्ते पर पाबंद रहूं। असल में माजरा यह है कि मैंने फैसला कर लिया है कि यजीद को अपना जानशीन बना दूं, और चाहता हूं कि उसके मुकदमात जितना जल्द मुमकिन हो फराहम हो जाए और अपनी हयात ही में खिलाफत में रुकावटों का सद्देबाप कर दूं, और उसकी आइंदा हुकूमत की बुनियाद अपने ही हाथों से मजबूत कर दूं। और इस राह के लिए तुम वफादार साथियों और हम मसलिक दोस्तों की मदद का मुझे सहारा चाहिए।
5: लेकिन अमीर, आपने वादा किया था कि आप अपना जानशीन नहीं

0: बात सुनो मुगैरा, पता है वो कौन लोग हैं जो आजकल हसन इब्ने अली के घर में रहते हैं?
1: जल्दी करो,

0: कैस कैस उठो, मेरे साथ आओ, जल्दी करो।
1: क्या हो गया है?
0: बाहर देखते हैं क्या हो रहा है।
2: दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ो इसे।
1: दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा, देखते क्या हो।
0: घर मुहासिरे में है।
3: तुम जाग रहे थे?
4: हाँ, मैं सो नहीं सका।
1: क्या करें हारिस, जंग करें या फरार?
4: पहले यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो जंग करेंगे।
1: ठीक,
4: चलो मस्जिद निकलते हैं, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
1: आओ, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी करो। आओ, तोड़ो इस दरवाजे को, तोड़ो जल्दी इस दरवाजे को।
2: तोड़ो दरवाजा।
4: हारिस, हारिस क्या कर रहे हो? हारिस निकलो, मैं रुकता हूं, तुम लोग जाओ।
3: हारिस,
4: तुम लोग जाओ, मैं इनका रास्ता बंद करता हूं। जाओ, तुम लोग जाओ।
0: सही कह रहे हैं कैस, तुम जाओ।
4: फिर से तुम क्यों आ गए? जाओ।
0: अरे बेटू ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, मैं तो रुकूंगा।
4: हर
0: मैं तो रुकूंगा। कैस तुम जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए चले जाओ यहां से।
4: जाओ कैस, तुम चले जाओ। तुम हसन इब्ने अली के सिपह सालार हो, तुम्हें इनके हाथों गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जाओ, हसन इब्ने अली को हमारा सलाम पहुंचा दो।
1: ठीक है, जाता हूं, तुम्हारा सलाम भी पहुंचा दूंगा। देखो, गौर से देखो, हर जगह देखो, कोना कोना ढूंढो, देखो, जल्दी करो, तुम उस तरफ जाओ, जाओ। तुम मेरे पीछे आओ। बाप रे बाप।